कुदरत कवन कहा विचार वारियन जावा एक वार जो तुद भावै साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार. इन दीज थ्री पौड़ीज असंख जप असंख पाव द वन पौड़ी ऑफ दिस असंख मूर्ख अंध कोर. सो दिस बॉडी इज टॉकिंग अबाउट पीपल दैट आर मूर्ख एंड पीपल दैट आर ब्लाइंड. And the body after this, Maharaj says, Asank Naam, Asank Thaam. And they go through a bit more. All these three bodies have as their uniting force, the bottom, which is Kudrat Kavan Kaha.

पर जियो। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन।

गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदित सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत निरोतरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उधरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूढ़ पापी चित लग तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा सत्संग जी रन की फतेह बुलाने जी वाहिगुरु जी का खालसा।